0: क्या यार तुम लोग?
1: मैं नहीं आ रहा। अरे कितना
0: रिलैक्स। चल मैं अकेले।
1: चल चल तू जा भाई।